0: ओ मेरो फुलीवाली, अब के छ त भित्र?
1: के भित्र? को फुलीवाली? म त बहिनी।
0: बहिनी त साली हो, तिमी नै त मेरो फुलीवाली।